कमसा जगा मिदिया मारुडा चाहे कमाल तो आप तुम ही डरो आप गुंडवार बगार रंजाव यान नालियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम्हारे बापु बुआ तंगियां गिला चपुआ